0: हेलो
1: बुझो तिमीले तिमीलाई साँच्चै माया गर्छौ भने झिक्टी कानुनी रूपमा हाम्रो बनाइहाल्ला है। आज मैले अर्कै केटीसँग झिक्दैछ, बेलैमा विचार गर है मान्छु बेलैमा।

तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।

0: बजाज एक्सचेंज मेला में जम्मै दिन्छ। आफ्नो पुरानो बाइक स्कूटर लिएर आउनुहोस् र न्यू बजाज बाइक को साथ जम्मै लिएर जानुहोस्। जम्मै वैल्युएशन, जम्मै क्याश डिस्काउंट।
1: एक्सचेंज डेट यही असार 4 गते देखि 16 गते सम्म।
2: स्थान राप्ती अटो इंजीनियरिंग बजाज शोरूम, शहीद गेट गुराही दाङ।
3: संपर्क फोन 0825564223। संपर्क मोबाइल नंबर 98578301, 98478313133 र 98686 37244।

0: बाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम चाइन चेक यति बेला बेलुकीको 7 बजेको छ।

0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम ट्रांग चेक यति बेला रात्रि को 9 बजे को छ।

0: एक जबरदस्त कहानी है।
1: और टाइटल क्या है फिल्म का?
0: वेलकम टू द जंगल।
2: स्वर्गद्वारी चलचित्र मंदिर घोराईदांग में भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ हिंदी कथानक चलचित्र वेलकम टू द जंगल।
3: हमें जाने तो मालिक, हम तो फांड है, रोजी रोटी के लिए काम करते।
4: तेरी शक्ल कहीं देखी हुई है।
5: आप फ्लॉप फिल्म में भी देखते हो?